0: पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मर्दूद से।
1: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
0: शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।
2: في سبيل الله

0: It's 12:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli glow har dia josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: हर चप्पा हर गोशा
4: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
3: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: ये सोचता हूँ के

दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

अलाए छो अबाणन अलाए छो वेढ़ी चन न पाड़ियो सुखन खे आया कीन मारू विसारियों वतन खे हो बीमारिया में बीमारी वे तरव्या वधाए बीमारिया में बीमारी वे तरव्या वधाए रोए थोरी धलशा रोए थोरी धलशा रोए थोरी धलशा दिसी खाली घरन खे।

0: सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: जी सीटों दा वधी वयो ज़रीर मौजूद अपोजिशन अगूणे फाटा जी टैक्स छूट जो मामलो वज़ीर आज़म आॾो रखियो। राणा सनोला चयो त नाणे जे वफ़ाकी वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब अपोजिशन अॻवाड़नि खे फाटा ऐं पाटा टैक्स ते IMF सां ॻाल्हाइण जी ख़ातिरी कराई आहे। उमेद त उहो मसइलो हल थी वेंदो। हुकूमत ऐं PTI ॻाल्हियुनि लाइ तयारु। वज़ीर आज़म जे सलाहकार राणा सनोला चयो आहे त वज़ीर आज़म जी मीसाक इस्तहकाम पाकिस्तान वारी आच बरक़रार आहे। हुकूमत हर क़िस्म जी ॻाल्हियुनि लाइ तयारु आहे। PTI अॻवान असद केसर चयो त मुल्क ऐं फ़ौज ॿई असांजा आहिनि, मीसाक जमहूरियत लाइ तयारु आहे। मोहम्मद औरंगज़ेब बजेट ते असांजा नुक़्ता मञण जी ख़ातिरी कराई आहे। PTI बानी जी आज़ादी बाबति मौलाना फज़ल रहमान जे बयान ते राणा सनावला चयो त उहो फ़ैसिलो अदालत कंदी, मौलाना जी शिकायतूं ख़तमु करण जी कोशिश कंदासीं। वफ़ाकी काबीना नई हज पॉलिसी जी मंज़ूरी ॾेई छॾी।
0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: पंहिंजो शहर, पंहिंजो घर, सकरण ऐं सकरण जो आवाज़
3: GAFM 90.8।

आप सुन रहे हैं व्हाइट एज एंड टी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड टी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के दावन से। और इस प्रोग्राम में आप लोगों को व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर टी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स उनके बारे में बताया जाता है और साथ साथ आप लोगों की खूबसूरती को बढ़ाने की बातें की जा रही है। तो बिल्कुल आप लोगों के साथ साथ मौजूद रहते हैं, पूरे दो घंटों का आपका हमारा साथ होता है, साथ में आप भी हमें ज्वाइन करते हैं। तो बिल्कुल जी, आप हमें कैसे ज्वाइन करने वाले हैं तो जरा उससे जाने बातें यानी कि आप लोगों को तरीकेकार बताते हैं कि आप किस तरह से हमें ज्वाइन करने वाले हैं। इसी के साथ साथ आज के प्रोग्राम में जो मैं आप लोगों से सवाल पूछने वाली हूँ तो जरा वो भी आप लोगों को बता देते हैं। तो आप लोगों ने आज जो मुझे जवाब देना है यानी कि जो आज के प्रोग्राम का टॉपिक होने वाला है वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो आज मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी कि आप जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं मुझे बताइए कि कर्बला का सबसे बड़ा पैगाम क्या है। यानी कि हमें भाई सारी हिस्ट्री तो पता है, यानी कि बहुत से लोगों को पता है, बहुत से लोगों को नहीं है कि पता, लेकिन आज आप मुझे ये बताइए कि कर्बला का सबसे बड़ा पैगाम क्या है। क्या ये आप बात जानते हैं? अगर जानते हैं तो मुझे बताइए जल्दी से, अगर नहीं जानते तो भाई आपको हम बताएंगे। और इसी के साथ साथ अगर आप हमारे साथ मौजूद होना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अपना सेल फोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK, सिंगल स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और उसे सेंड कीजिए 8881 पर। अगर आप मुझे फेसबुक पर सुनना चाहते हैं या फिर फेसबुक पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो GLRKANA FM 88.8 हमारा पेज है जनाब। आप जैसे ही सर्च करते हैं तो आपको इजीली हमारा पेज मिल जाता है। पेज के ऊपर आइए और पेज के ऊपर आपको हमारे प्रोग्राम की पोस्ट मिल जाती है बिल्कुल लाइव, जैसे आप लाइक करते हैं, कॉमेंट करते हैं और शेयर कर देते हैं। तो पोस्ट को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करते जाइए। और यहाँ पर जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, जितने भी समाते हैं, वो जनाब बताइए कि आप भी हमारे साथ साथ हैं और प्रोग्राम में आप हमारे साथ मौजूद रहने वाले हैं। ओके, सो आप टॉपिक को फॉलो करेंगे। टॉपिक जो मैंने आज आप लोगों से पूछा है वो बिल्कुल ये पूछा है कि आप मुझे बता रहे हैं कि कर्बला का सबसे बड़ा पैगाम क्या है। क्या आप जानते हैं? अगर जानते हैं तो मुझे जल्दी से बताइए और साथ साथ पोस्ट को लाइक और शेयर करते जाइए कि आप लोगों के फीडबैक्स हमारे जो प्रोग्राम में आते हैं तो हमारे प्रोग्राम की रौनकें होते हैं, बिल्कुल जी हमारे प्रोग्राम की जान होते हैं। तो आइए जी हमारे प्रोग्राम को जान दीजिए। और इसके साथ साथ अगर आप व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर टी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके बारे में भी आप हमारे साथ शेयर कीजिए कि कौन सा प्रोडक्ट आप लगा रहे हैं, कौन सा प्रोडक्ट आप लगाना चाहते हैं, क्योंकि ये बातें भी अगर आप हमारे साथ शेयर करेंगे तो अच्छा रहेगा। ऐसे के साथ साथ आप हमारे साथ मौजूद हैं जी, आप हमें ज्वाइन करते जा रहे हैं। आकाश अली हमारे साथ मौजूद हैं। हाय आपी, मैं आकाश अली पीरजादो का मोरो से, मेरा भाई शो सुन रहा है, दिले जान पीरजादो और सारे घर वाले आपका शो सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया जी। सबको खुश आमदीद कहा जाता है। और चाचा खाली चुनी जो हमारे साथ मौजूद के लिए, अस्सलाम वालेकुम बेटा सिडो, हाउ आर यू? मैं ठीक, आप बताएं आप कैसे हैं? How was your Friday? Friday बस सही रहा। और उसके अलावा AM अंसारी हमारे साथ कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, सलाम टू ऑल, मैं ठीक हूँ, आप बताएं। AM अंसारी कहते हैं सिडो मेरी डी स्किन और व्हाइट एज के प्रोडक्ट्स पता नहीं कब दिलाएंगी, एड़ी कड़ जे गर्मी में माता ब्लैक एंड व्हाइट। अच्छा व्हाइट मता ब्लैक एंड व्हाइट थी वो, या शायद ही तो पैदा थी वेंदस ता फ्यूचर जी गाल कयो था। और कहते शो लिसनिंग विथ कदीर देरो और हाजी गुलाम नबी मल्हा मुमताज मन जो थो। चलिए अगर ये मैंने कुछ थोड़ा गलत रीड कर लिया तो उसके लिए माजरत कर देते। वैसे आप थोड़ा आ जाइए अपने करीबी जनरल स्टोर से, मालूमात लीजिए वहां पर कौन से प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, अगर मिल रहे हैं तो मुझे बताइए ताकि हम आपको फ्री में दिलवाएं, ठीक है? मुझे नहीं पता कि फ्री में आपको दिलवा सकते या नहीं और मैं कोशिश करूंगी कि आपको दिलवा सकें, ठीक है? और चाचा खालिद कहते हैं कि अच्छा हमने टॉपिक का जवाब दिया। ओके जी, ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। और साथ साथ हमारे साथ मीरपुर खासी अब्दुल्ला महरी के लिए अस्सलाम वालेकुम बाजी, व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम जबरदस्त है।

अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई फेयरनेस फार्मूला आप क्या चीज है, ये क्या बला है, तो आप लोगों को बताते चलें कि जब खास करके ऐसा होता है ना कि आप कोई नाइट क्रीम नहीं लगा पाते हैं, आपकी स्किन ऐसी है कि आपने कोई भी उसके ऊपर इस तरह का प्रोडक्ट नहीं लगाया है जो कि आपके चेहरे को खराब कर दे, या फिर आप डरते हैं कि हम नहीं लगा पाते, हमारी स्किन काफी ज्यादा सेंसिटिव है, तो उसके लिए आपके लिए जो है ना वो फेयरनेस फार्मूले तैयार किए जाते हैं। उनसे आपको ये फायदा मिलता है कि आपकी स्किन फ्रेश भी रहती है, ग्लोइंग भी रहती है, आपकी स्किन की हिफाजत भी होती रहती है। मार्केट में आप लोगों को बहुत अच्छी अच्छी फेयरनेस क्रीमें मिल जाती हैं, लेकिन जब आप व्हाइट एज लवली क्रीम की जानब आते हैं और व्हाइट एज लवली क्रीम इस्तेमाल करने के बारे में सोचते हैं, तो उसके बारे में पहले जरा जान लें कि क्या ऐसी इसकी खास बातें हैं जो कि आपको इस्तेमाल करनी चाहिए। तो व्हाइट एज लवली क्रीम सबसे पहली बार रेडियंट अल्ट्रा वाइटामिन का फार्मूला है, यानी कि इसके अंदर 30 वाइटामिन के कैप्सूल एड किए गए हैं। इसके अंदर वाइटामिन B3 है, वाइटामिन ई है, वाइटामिन सी है, वाइटामिन डी है, और इसी के साथ साथ सनस्क्रीन भी एड की गई है। यानी कि फेयरनेस क्रीमें तो भाई नॉर्मल सी फेयरनेस क्रीमें होती है, लेकिन व्हाइट एज वालों ने जो फेयरनेस क्रीम तैयार की है तो उन्होंने एक्स्ट्रा एक चीज भी एड कर दी इसके अंदर जो है ना, वो सनस्क्रीन एड कर दी है। इससे फायदा ये होगा कि आप लोगों को खूबसूरती तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन आपकी खूबसूरती की हिफाजत भी होती रहेगी। तो व्हाइट एज लवली क्रीम जो कि फेयरनेस फार्मूला है, जिसे आप किसी भी उम्र में इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने बच्चों के ऊपर अप्लाई कीजिए, बूढ़ों के ऊपर, जवान लोग हैं, मर्द हजरात, खवातीन, हर कोई इस्तेमाल कर रहा है और अपनी खूबसूरती की हिफाजत कर रहे हैं। अगर आप कोई भी जॉब करते हैं, कोई काम करते हैं, तो आप जो है ना वो इस्तेमाल कर सकते हैं इजीली व्हाइट एज लवली क्रीम, जिसे आप गर्मियों में भी लगा सकते हैं। बहुत एक जबरदस्त सा प्रोडक्ट तैयार किया है, तो जरूर आप ट्राई करके देखिएगा। जितने भी प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करें, चाहे आप व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम लगा रहे हैं, डॉक्टर पिंपल एंटी एक्ने ट्यूब लगा रहे हैं, या फिर व्हाइट एज लवली क्रीम लगा रहे हैं, तो इन्हें लगाने से पहले अपना फेस वॉश आप लाजमी कीजिएगा, ठीक है। फेस वॉश कीजिए, उसके बाद आप अप्लाई कीजिए, ताकि आप लोगों की खूबसूरती जो है वो आपको मिले और आप हमेशा के लिए अपनी खूबसूरती की हिफाजत भी करते रहे। इसी के साथ साथ आज के प्रोग्राम में मैंने आप लोगों से सवाल पूछा है कि आप मुझे बता रहे हैं कि करबला का सबसे बड़ा पैगाम क्या है। यानी करबला का वाकया तो हर कोई जानता है, हर किसी को पता है, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि करबला का जो है ना वो सबसे बड़ा पैगाम क्या है। इसी के साथ साथ अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं, जुड़ना चाहते हैं, आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप हमें 888 और फेसबुक पर ज्वाइन करते जा रहे हैं। फेसबुक वाले जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, पोस्ट को काइंडली लाइक और शेयर कर दिया करें।

बिजी आप सुन रहे हैं प्रोग्राम व्हाइट एज एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से आप इस्तेमाल करते जा रहे हैं खूबसूरतियां हासिल करते जा रहे हैं और साथ ही साथ हमारी पोस्ट को लाइक और शेयर करते जा रहे हैं। अच्छा बख्तली सियाल भाई हमें सुन रहे हैं, बख्तली सियाल भाई आपका बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ। और फहीम शेख कहते हैं याली मदद मुलाइसला मदद रेशम गली लाड़काना से शो सुन रहा हूँ। ओके जी ओके आपको खुश आमदीद कहा जाता है। और फहीम कहते हैं कसीदो सुनाओ, जी जी कसीदा सुनाते हैं आपको बहुत शुक्रिया। नजीर कोसो में सुन रहे हैं बलूचिस्तान से और कहते हैं अगर अल्लाह को राजी करना चाहते हैं तो उसकी मखलूक के साथ अच्छा सलूक करें। बिल्कुल जी। और उसके अलावा हैं जी हमारे साथ सनावला बिरोही, वालेकुम अस्सलाम, अदी छालाएं खुश आयो अदमा सफा ठीक तामुदा।

0: ओके जी, फहीम शेख क्या कहते हैं,
1: ये तेरा काम है परवरदिगार,
0: बादल के आगे जुरत इनकार ना होगा, वाज़े है कि वो साहिब किरदार ना होगा, सफ़ी में इश्क जिसने भी समझा हुसैन अलैहिस्सलाम से, जीने का कभी भी वो तलबगार ना होगा। क्या बात है जी, जबरदस्त। और किशोर भाई कहते हैं सलाम अदा खुश आयो, बस हाजिरी कबूल करें। जी जी बिल्कुल, आपकी हाजिरी कबूल करें। और आप कैसे हैं, ठीक ठाक हैं। दर्दे दिल कहते हैं कि हजरत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अपनी खुशियों को संभाल कर रखो, क्योंकि हर नेमत हर नजर को बर्दाश्त नहीं करती, और शुक्र और आजी नेमतों की हिफाजत का बेहतरीन जरिया है। बिल्कुल जी, ऐसा ही है। आजकल हम जैसे अपनी खुशियों की जो ना नुमाइश कर रहे होते हैं, तो ये सही बात नहीं होती। जितना आप चीज़ों को हाइड रखेंगे, उतना आप जिंदगी में खुश रहेंगे।

ओके जी, क्या बात है, बहुत ही ज्यादा फेवरेट वाला कसीदा हमने यहाँ पर सुना. इसी के साथ साथ एक और कसीदा हमारी लिस्ट में मौजूद है जो कि हम आप लोगों के साथ साथ सुनने वाले प्रोग्राम सुन रहे हैं. व्हाइट एज एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से. और इसके साथ साथ यहाँ पर मैंने जो आज आप लोगों से सवाल पूछा है तो उसका जवाब आप मुझे बताते जा रहे हैं. मैंने आज आप लोगों से सवाल पूछा है कि आप मुझे बताएं कि कर्बला का सबसे बड़ा पैगाम क्या है, कर्बला का सबसे बड़ा पैगाम क्या है, क्या आप जानते हैं तो मुझे बताइए. और इसी के साथ साथ प्रोग्राम का ऐसा बनते जाइए. एम अंसारी लिखते हैं, कर्बला का मकसद हक और बातिल में फर्क को वाजे करना था. इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कर्बला में हक पर साबित कदम रहकर बातिल को शिकस्त दी. और कसीदा प्ले करना, चले मैं देखती हूँ आपका कसीदा लगाते हैं. और बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद हैं. और मोतिया सेठानी भाई हमारे साथ हैं, वालेकुम अस्सलाम, आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा है, थैंक यू. और सनाउल्लाह बिरोही कहते हैं, अदी हम भी आपके साथ साथ हैं, शो में हाजिरी लगा चुके हैं, चलें जी बहुत शुक्रिया. और फहीम कहते हैं, कर्बला का पैगाम है जुल्म के आगे कभी भी झुकना नहीं है. ओके, दर्द दिल आप हमारे साथ हैं, थैंक यू. किशोर भाई कहते हैं, शुक्र मेरे मालिका, वो जिस हाल में रखे हमें खुश रहना है. ओके जी, बिल्कुल यही एक सोच होनी चाहिए. अच्छा, तो अगर हम ऐसा है ना कि मैं अगर किसी से ये कहती हूँ कि भाई हमारी जिंदगी में जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है, इस चीज का अगर आप यानी कि इस चीज को अगर आप समझ लेते ना, आगे जाकर आपको इसका अंदाजा होता है कि वाकई कुछ टाइम पहले जो हमारी लाइफ में ये चीज हो गई थी तो उसका हमें आगे जाकर ये फायदा मिला. लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़े नाशुक्रे होते हैं. अगर उनसे इस तरह की कोई बात की भी जाती ना कि भाई आप हौसला रखें, सब्र करें, आपकी जिंदगी में जो हुआ है वो बेहतरी के लिए होता है, यानी कि जो भी चीज होती है वो अच्छे के लिए होती है, तो उन्होंने ना आगे से बस यही कहना होता है कि भाई हाँ हीजे को कम थे वाकई सही जिले थे हर नमाज के कड़ो फायदो मिलन दो. यानी कि इतनी आपने ना शुक्र नहीं बना अपनी जिंदगी में, हमेशा जो है ना आपने ये सोचना है ऐसा है कि भाई ये तो वाजे चीज है कि आप जितना शुक्र करती हैं आपको उतनी चीजें अता होती है, लेकिन आप जितनी ना शुक्री करती हैं उतनी जो है ना आपकी जिंदगी जो है ना ऐसी हो जाती है कि आप बस ना शुक्र ही रहें और आपकी जिंदगी में वाकई चीजों की किल्लत होना शुरू हो जाती है. तो इसलिए कहती हैं कि शुक्र में रहा करें, क्योंकि आप जितना शुक्र करते हैं उतना आपकी जिंदगी जो है ना वो खुशियों से भर दी जाती है, क्योंकि आप शुक्र करने वाले इंसान हैं. तो शुक्र करने वाले इंसान बने. ऐसा नहीं कि अगर आपकी जिंदगी में कुछ हो जाए कोई अगला इंसान आपको दिलासा दे रहा है, आपकी तकलीफ में आपके साथ मौजूद है, लेकिन आपने आगे से ये कहना है कि भाई यानी जेको कम थियो आ इन में केड़ी भलाई हुंदी, इन में छा हुंदो, ये छो थियो मुसा, ये जो अल्फाज ना ये मत निकारा. ये बहुत एक बुरी आदत होती है जो ज्यादातर आजकल के लोगों में पाई जा रही है. तो इन चीजों से जरा गुरेज करें. अगर आप इन चीजों के ऊपर ध्यान करें ना कि वाकई जो आपकी जिंदगी में हुआ या जो चीजें आपकी जिंदगी में हुई, आगे जाकर उन चीजों का आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को अंदाजा होता जाएगा कि वाकई जो हुआ वो बेहतरी के लिए था. और इसी के साथ साथ अपनी जिंदगी में खुश रहिए.

ओके जी, पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए और साथ साथ हजार खान जतोई भाई हमारे साथ मौजूद है। वालेकुम अस्सलाम, ठीक है प्यारा भाता की आयो? कहते कि जी हम भी आपके साथ साथ हैं। थैंक यू सो मच, आप भी हमारे साथ साथ मौजूद हैं प्यारे भाई जान।

ओके जी, क्या बात है. और साथ साथ जो है ना, आप हमारे साथ मौजूद हैं और आप लोगों को ये बताते जा रहे हैं जनाब, अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का या फिर आप इस्तेमाल करें डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का, जो कि मैं आप लोगों को दूसरे घंटे में आऊंगी तो बताऊंगी कि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का क्या ऐसा कमाल है जो कि आप लोगों को मिलने वाला है. तो अगर आप वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं तो बिल्कुल जरूर कीजिए और वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराइए. और डायल करती रहिए 03 1579 0595. ये नंबर आप डायल कीजिए, अपने एरिया में अवेलेबल कराइए, वहां से जाकर बस आनी परचेज करते जाइए और इसी के साथ साथ इस्तेमाल करते रहिए वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो कि आपके खूबसूरती की जमानत है. इसी के साथ साथ टाइम हुआ चाहते हैं जरा हम न्यूज ब्रेक की जानिब जाते हैं, उसके बाद शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक होने वाले हैं, वापसी जल्दी आप लोगों के पास आते हैं. आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ मौजूद रहना, प्रोग्राम ही हमारे साथ साथ रहिए पूरी पूरी 3 बजे तक और सुनते रहिए वाइटिश एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स.

घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी दस खे अमरीका में तय थियल मुआहदे जे मुबारक ॾिण सां गॾु ॻाल्हियुनि जे ईंदड़ मरहले बाबति मुशावरत कंदो। ईरानी परडे॒ही वज़ीर अब्बास इराक़चीअ जे अॼु स्विट्ज़रलैंड जे दौरे जा इम्कान। अमरीकी ख़सूसी नुमाइंदो स्टफ विटकोप स्विट्ज़रलैंड पहुतल। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट मौजूब स्टफ विटकोप ईरान सां एटमी मामलनि ते ॻाल्हियुनि लाइ स्विट्ज़रलैंड पहुतो आहे। ईरानी वफ़द बि स्विट्ज़रलैंड पहुचंदो। जंगबंदी जे ऐलान बावजूद इसराइल जा लबनान ते फिज़ाई हमला जारी। 5 शहरी शहीद, केतिरा ज़ख़्मी। लबनानी अख़्तियारनि मूजिबि इसराइली जंगी जहाज़नि ऐं ड्रोन्स नबतिया जे इलाक़नि में आबादियुनि खे निशानो बणायो। इसराइली फ़ौज पारां इमारतुनि ते बमबारी जो सिलसिलो वक़्ती वक़्ते सां जारी आहे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार मिस्र रवानो। चइनि मुल्की परडे॒ही वज़ीरनि जे इजलास में शिरकत कंदो। काहिरा में थींदड़ चइनि मुल्की इजलास में सऊदी अरब, तुर्किया, मिस्र जा परडे॒ही वज़ीर शिरकत कंदा। इजलास में ख़िते सूरतहाल, ईरान अमरीका मामलनि जे अगबराई जो जाइज़ो वरितो वेंदो। असांजी कोशिशुनि रंग लातो आहे। ख़िते मां जंग ख़तम थी आहे। पाकिस्तान, अमरीका ऐं ईरान खे ॻाल्हियुनि जे मेज़ ते विहारियो। पाकिस्तान जंग रोकण में अहम किरदार अदा कयो। वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल ऐं आज़ अवाम खे वाधायूं पेश कयां थो। क़ौमी असेंबली में बजट खे सेट ॾींदे नाणे वारे वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब चयो आहे टैक्स निज़ाम में बुनियादी सुधारा कया आहिनि। नंढनि आबादकारनि ऐं हारनि खे बिना व्याज कर्ज़ ॾिना आहिनि। आलमी मार्केट में तेल सस्तो थियण जो तकिड़ो रिलीफ आवाम खे ॾिनो आहे। सिंध असेंबली में बजट ते बहस जारी। अपोजिशन मेंबर जे बजट ते तंक़ीद। अरिड़हनि सालनि खां मौजूदु मसला हल न थियण जूं दाहूं। एमक्यूएम एमपीए फ़हीम पटनी चयो त अरिड़हीं तरमीम ते सूबे में अमल न थियण सबबि मसला आहिनि। सूबो वफ़ाक़ खां पैसा वठी विरासत नथो करे। पीपी एमपीए नूर मोहम्मद बुरगड़ी चयो त चोर दरवाज़े खां नाहियूं आया। बोझ सबबि मुंहिंजी तकड़ी जा मुतासिर थियल स्कूल ठाहे ॾिना वञनि। आबादगार बि पाणी लाइ परेशान आहिनि। पंजाब पारां रोकियल पाणी वठी खोट ख़तम कई वञे। केपी जे इलाइक़े बनू में वेन ऐं कार रोड ते लॻायल बारूदी मवाद सां टकराइजी वियूं। इमदादी कारवायुनि समेत 7 ॼणा मारिजी विया, 3 ज़ख़्मी। डीपीओ बनू चयो आहे त मरकाबेरा में रोड भरिसां धमाके सबब वेन में सवार 5 ऐं कार में सवार 2 ॼणा मारिजी विया। लाश ऐं 3 ज़ख़्मी अस्पताल मुंतकिल। बारूदी मवाद रोड जे किनारे सां लॻायो वियो हो। सिंध जे खुराक खाते में अरबे रुपयनि जी करप्शन कंदड़ 5 ऑफिसरनि ऐं मुलाज़िमनि खे नौकरियुनि मां निकाली। ज़िमेवारनि खां 2,50,62,00,00 खां वधीक उगाइण जो हुकुम। केस एंटी करप्शन हवाले। फूड इंस्पेक्टर कनकोट बलकशेर शेख, फूड सुपरवाइज़र गुलाटी हबीबुल्ला अबड़ो, फूड सुपरवाइज़र जोही अली असगर पंवर, फूड सुपरवाइज़र मजीद किरियो, दीदार हुसैन मंगसी, फूड इंस्पेक्टर हाली रोड हैदराबाद मोहम्मद अली मंगसी खे नौकरीअ मां निकाली ॾिनी वई। खुराक खाते जो सूबाई वज़ीर मखदूम महबूब ज़मान चयो आहे त बरतरफ़ आफ़िसरनि जा केस एंटी करप्शन खे मोकिलिया विया आहिनि। ज़िमेवारनि खां पैसा उगाइण लाइ अदालतुनि में सिविल सूट दाख़िल कया वेंदा।

घोड़की वेझो जमीन के मालिके तां बिंदुरुन में झेड़ो एक जणो कतल घोट नूर मोहम्मद शर में शर बरादरी के बिंदुरुन में झेड़ो थो जड़े दौरान गोलियों लगन सब राशिद शर मारजी गयो एक जणे के कतल बाद धुरन में छिकाण वधी वई सेवण में चार डी अग घर ठाण लाइ बैंक मां पैसा वठण बाद गुम थियल पीरसन जो लाशत घोट नो वाण जे रवासी पीरसन मोहम्मद सदी खाल पुट जो लाश जहाज चौक तां मिलियो पीरसन जे वारसन चवंदा त पीरसन के पैसन जी लालच में अगवाबाद तशद्दुद करे कतल कयो वियो आहे। कोठड़ी में पढ़ियल औरत जो घर में फाओ खादल लाश अत सुमेरा जाल करीम बख्श बबर जो लाश घर में मिलो औरत के मुड़स करीम बख्श बबर जो चवण है आऊं घर का बाहर सामान वठण व्यस्त पया जाल पखे में फाओ का यह अबकात कर पुलिस चवण है मामले की जांच करूं पा पनवाकल में अगवा थियल सभा कलोड़ो की बाजियाबी लाए शहर की एहतजाजी रैली सियासी समाज दुरन बेनजीर पार्क का ईद चौक ने रैली कढ़ी पनवाकल में अगवा थियल सभा कलोड़ो ए सालेपट में अगवा थियल निंगरी प्रिया कुमारी के बाजियाब कराने जो मुतालबो सिंध मुख्तलिफ शहर में किथे मिट्टी जो तूफान तो किथे बरसात बिजली बंद शिकारपुर बिरपासे में मिट्टी के तूफान ए बरसात सबब बिजली बंद थी वही मियां साहब ए मीरपुर बुरड़ो में तेज तूफान से वसकारो तेज तूफान बाद मुख्तलिफ इलाक की बिजली बंद थी वही बलोचिस्तान के ओसा मोहम्मद में भी ककर वसी पा मौसम खुशगवार पितोरों में आबादगार पारा पानी खोट खिलाफ एहतजाज प्लेमाइनर में निकलदड़ सहित की शाख के पुछड़ी आबादगार पानी खोट खिलाफ एहतजाज कयो पानी फराम करण जो मुतालबो मीरपुर बठोरो वेझो झोक शरीफ में भी आबादगार पानी की खोट खिलाफ एहतजाज जरी पानी की खोट खत्म करण जो मुतालबो सखत की अदालत पनवाकल में मुकाबलो जनाए मारियल जहांगीर जखरण जो केस दाखिल करण जो हुक्म दे छो सखत की अदालत एसएचओ अब्दुल शकूर लाखों समेत नवन एहलकारन खिलाफ एफआईआर एफआईआर के केस दाखिल करण जो हुक्म दिनों डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सकर अला बचाओ कबूल एफआईआर दाखिल करण वाले केस की बुधनी कई दरख्वास्त गुजार सफदर जखरानी मकसूल की नियाणी मुकदस ए वकील मुर्तजा कोराई अदालत में पेश किया अदालत चौथे एसएचओ अब्दुल शकूर लाखो एएसआई खालिक नो जतो ही पुलिस एहलकार खिलाफ केस दाखिल किया वे पनवाकल पुलिस 16 अक्टूबर 2025 से जहांगीर दखराणी के मुकाबले में मारण की दावा कई हुई कनकोट वेझो बिन मोटरसाइकिल विच में टक्कर बजना फोत हैबत रोड के हादसे में गुलाम मुस्तफा बंगवार राशिद जादर हयाती विञाए वेठा पनवाकल वेझो हादसे में दाडो खोटी समेत फोत बजना जख्मी सांगी वेझो गोभी शाला मोटरसाइकिल में आमू सामू टक्कर शाहनवाज इंटरनेशनल पोटरी आयशा फोत

0: सनक्रॉप ग्रुप का डायमंड हाइब्रिड राइस सीड, किसान की उम्मीद, खुशहाली की नवीद।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: अजरक के रंगों से रंगी,
3: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज, आवाज
3: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
4: It's 3:15 PM.
5: This time check is brought to you by White Ish Beauty Cream, glowing skin jo raaz, a product by Biocon International Pakistan.

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

ओके जी, सो आपके मैसेजेस की जाने भी आते हैं, आपके काफी सारे मैसेजेस पैनल पर जमा हो चुके हैं, तो देखते हैं कौन कौन हमारे साथ मौजूद है. यहाँ पर जो मुझे मैसेज मिला है वो जी लाड़काना से है, करीम नवाज एंड अली नवाज नूरपुर से. अच्छा, नूरपुर से सुन रही है मौला इस्लामत, आपको खुश आमदीद कहा जाता है. करीम नवाज एंड अली नवाज, और ये हमारे साथ हैं. इरम कहती है, मेरी प्यारी दिलबर दोस्त, वाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो. नहीं नहीं, चलता रहेगा, चलता रहेगा, और टेंशन ना लें आप. और ये हमारे साथ इमरान अली बिरोही कहते हैं, बाजी जवाब है दीन इस्लाम को बचाना, इमरान अली बिरोही लाड़काना से. ओके जी, वेलकम करते हैं. इरम कहती है, आप ही नहीं, अभी तक तो नहीं. और शायद मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं जरा परहेज करूँ.

ओके जी, पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए और साथ साथ आप हमारे साथ मौजूद है, हमें बताते जाइए। और ये हमारे साथ हैं जी, आज भी जब नामे हुसैन लबों पर आता है दिल अदब से झुक जाता है और आंखें नम हो जाती हैं। इमरान अली बिरोही लाड़काना से हमें ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत शुक्रिया प्यारे भाई। और प्रिंस अहमद अली रिंद हमारे साथ हैं फ्रॉम अहमद अब्बास, वालेकुम अस्सलाम कहते हैं, सलाम पाक आर्मी, स्वीट शो प्लीज मिले मेरी झोली भर दे, चले ये आपकी फरमाइश लगाते हैं, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ। और शोनी कहती है आप ही जान में भी आ गई, सॉरी आप ही मैं कुछ दिनों से शो को ज्वाइन नहीं कर पा रही थी, आप ही मैं बहुत बिजी थी इस वजह से मैं नहीं आई। चले कोई बात नहीं शोनी, अब आप आ चुकी हैं तो आपको खुश आमदीद कहा जाता है। और ये सजाद अली जमाली हमारे साथ ही नवाबशाह से कहते हैं आपको भी खुश आमदीद भाई जान। इरम कहती है सिजानी जी इंशाल्लाह, मैंने उम्मीद तो करी है, अल्लाह पाक नसीब करेंगे।

मेरी दर्द दिल कहती है कि टॉपिक चंदा वाकिया करबला हमें सबर वफादारी और दीन इस्लाम की खातिर कुर्बानी का दर्स देता है. ओके जी. और गुलाम रहीम बलोच हमारे साथ कहते हैं सलाम जबरदस्त प्रोग्राम. अथर पार्कर से वफा गुलाम रहीम बलोच हमारे साथ मौजूद है, वेलकम करते हैं भाई को. और वफा वहीद हमारे साथ ही, वालेकुम असलम सिद्रा जी आप कैसी हैं, माशाल्लाह बेहतरीन प्रोग्राम. राम जेकब आबास आप हमारे साथ मौजूद है, थैंक यू. फहीम आपका कसीदा लगाते हैं, थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा. वरियाम कहते हैं कि सिद्रा इस प्यारे शो में हमारा दिल से सलाम हो आपको, आपको भी वेलकम एंड वालेकुम अस्सलाम खुशामदीद. और गुल मोहम्मद रिंद भाई हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं भाईजान, ठीक ठाक. अच्छा चाचा खालिद कहते हैं हमारी उम्र के हिस्से में कौन सी क्रीम इज बेटर, डी स्किन या वाइट एज? तो आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है. डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों को पता चलता है कि वाकई आप कितना अच्छा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं. तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाइएगा और साथ में डी स्किन फेस वॉश भी आप ट्राई करके देखिएगा, ठीक है चाचा.

अच्छा न चाचा तुम टेंशन के तुम का उम्र नथा पूछू उम्र पूछण वैसे मुझे कम भी ना हों वो मानू है जो पांजे कम से कम रख है अच्छा गुल मोहम्मद रिंद भास से गड मौजूद आयन कहते हैं ये दुनिया तुम्हें क्या देगी मोहसिन जिसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पानी तक ना दिया हाँ भाई सही गाल है किशोर भाई कहते हैं अदी शुक्र करण ते अवहां जो समझायो इलाही सुठो लगो मुखे मुझी गाल ते अवहां जो समझायण वणंदो आ इलाही जो पंहिंजो पाण फील थींदो आहे हाँ ये हकीकत है वैसे अगर ॾिठो वञे न त इलाही चीज़ूं हूंदियूं आहिनि जेके मूंखे तव्हां सां शेयर करणियूं हूंदियूं आहिनि पर कॾहिं वक़्तु न आहे मिलंदो वरी कॾहिं अहिड़ो मौक़ो न आयो हूंदो जो उन्हनि ॻाल्हियुनि खे तव्हां ताईं पहुचायो वञे त अगरि कुझु ॻाल्हियूं तव्हां करे वठंदा आहियो त पोइ असांजी बि दिलि चवंदी आहे तव्हां सां कुझु ॻाल्हियूं करे वठूं ऐं उहे ॻाल्हियूं कुझु शायदि तव्हांजे बहितरी लाइ हुजनि ऐं वरी जॾहिं तव्हां जहिड़ा प्यारा माण्हू असां सां गॾु मौजूदु हूंदा आहिनि जेके सम्झंदा आहिनि चीज़ुनि खे उन्हनि खे ख़बर हूंदी आहे त असां जेको कयूं पिया या जेको कुझु थिए पियो उहो सभु पॉज़िटिव तरीक़े सां वठंदा आहियो त पोइ अञा वधीक सुठो लॻंदो आहे अच्छा सो तव्हां बि पोस्ट खे लाइक शेयर कयो जिन माण्हुनि अञा ताईं कोन कयो आहे टॉपिक खे तव्हां फॉलो कयो था गुल मोहम्मद रिंद भा चले मैं कोशिश करती हूँ बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ और साथ साथ यहाँ पर टाइम हो जाता है जरा हम जो है ना वो शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जानिब जाते हैं उसके बाद हम जल्दी से वापसी आप लोगों के पास आते हैं आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा हम आपके साथ मौजूद रहेंगे पूरी पूरी 3 बजे तक सुनते रहिए प्रोग्राम व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाइए और खूबसूरत हो जाइए

0: की आवाज।
1: ब्यूटी को बनाओ परफेक्ट ब्यूटी, बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम के साथ, जो दे आपको खूबसूरती का हकीकी एहसास। चेहरे के दाग धब्बे, खेल महासे और बेजानपन, अब सबको कहें अलविदा। बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम चेहरे की जल्द को दे नया निखार, नरमी, ताजगी और कुदरती चमक। सावली रंगत अब नहीं, सिर्फ 3 दिन में पाए साफ, निखरी और गोरी रंगत। लेकिन याद रखें, बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल से पहले बेस्ट लुक ब्यूटी सोप जरूर इस्तेमाल करें, ताकि असर हो दुगना। आज ही अपने करीबी कॉस्मेटिक, जनरल एंड मेडिकल स्टोर से बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम नाम लेकर खरीदें। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल करें 0333-7896-343 एंड 0315-4501-092। बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जो नजर आए, जो महसूस हो।
2: डॉक्टर नूर हुसैन पुसियो, MBBS FCPS, तजुर्बेकार ऐं माहिर जनरल फिजिशियन। हिते मेडिसिन सां लागापियल सभिनी बीमारियुनि जो इलाज कयो वञे थो, जंहिं में मलेरिया जो बुखार, टाइफाइड, खंघ, नज़लो, जुकाम, छातीअ जा इन्फेक्शन, शुगर, ब्लड प्रेशर, गैस, अल्सर, कब्ज, मैदे ऐं हाज़मे जा मसाला, थायराइड जा मसाला, वाइटमिन्स जी कमी, थकावट, कमज़ोरी, जिगर ऐं पेट जूं बीमारियूं, जोड़नि जो सूर ऐं दिलि जे शुरूआती बीमारियुनि जो बहितरीन इलाज कयो वञे। डॉक्टर नूर हुसैन पुस

It's time to commercial break. रोनो सुबह सत लगी 300 मिनट अंते सिर्फ GFM 88 ने

और अपने रब के सिवा दुनिया के किसी भी यजीद के आगे नहीं झुकेंगे. सलाम शहीद करबला, वेलकम करते हैं हम अपनी प्यारी साइमा मीर को. और साथ साथ हमारी लिस्ट में एक कसीदा है, तो जरा उसको भी सुन लेते.

और उसके अलावा जो हमारे साथ हैं जी साइमा मीर दोबारा से कहती हैं कि हाँ बिल्कुल ऐसी बातें करने के लिए हमें और हमारी सिद्रा को एक अलग शो की जरूरत है. बिल्कुल जी, मेरा आजकल ये दिल चल रहा है, दिल कर रहा है कि मेरा ना ऐसा है कि भाई मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा शो करूं जो कि बिल्कुल लाइट सा हो, यानी कि अपनी तबीयत से बिल्कुल उलट, यानी कि लोगों को लगता है कि मैं जिस तरह का शो करती हूं तो मैं इस तरह का शो नहीं कर पाऊंगी कि वो लाइट सा हो, संजीदा से लोग हो, संजीदा सी बातें चल रही हो. लेकिन ये मेरा दिल कर रहा है कि ऐसा एक शो मैं करूं और मैं शायद करूंगी. तो फिलहाल तो जो चल रहा है उसके ऊपर आप गुजारा कर लीजिए. और बहुत शुक्रिया साइमा, आप हमारे साथ हैं. अच्छा इरम, क्या बात है, माशाल्लाह जी, बहुत अच्छी बात है. आप ख्याल रखिएगा अपना और मेरे लिए दुआ जरूर कीजिएगा, ठीक है.

ओके जी, इमरान अली बिरोही हमारे साथ ही लाड़काना से लिखते हैं कि खून चराग से खून से चरागे दीन इस्लाम जलाया हुसैन ने, रस्म वफा को खूब निभाया हुसैन ने, खुद को तो एक बूंद भी पानी ना मिल सकी मगर करबला को खून पिलाया हुसैन ने, ऐसी नमाज कौन पढ़ेगा जहां में सजदा किया तो सर ना उठाया हुसैन ने, सबरे हुसैन को मेरा सलाम। इमरान भाई आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में। ओके जी शोनी, ठीक है ठीक है। अच्छा सरदार हाजी हमारे साथ मौजूद हैं, मैं ठीक हूँ भाई जान, कहते हैं दुनिया जी ना ही परवाह सिस्टर तवां दे खेर हुजे हा तवां जो मोहब्बतूं आइन। अच्छा गुल मोहम्मद रिंद भाई जान लिखते हैं कि इमाम हुसैन अलैहि सलाम ने सबर कर वफादारी का दर्स दिया है और उसने हमेशा ये बताया है कि कभी भी जालिम के सामने अपना सर मत झुकाना, सर हमेशा खुदा के सामने झुकाना, करबला में हमेशा वफादारी का दर्स दिया है और सबर का भी। चलें जी बहुत बढ़िया। और ये हजार खान जतोई भाई हमारे साथ कहते हैं करबला का सबसे बड़ा पैगाम हक और बातिल के दरमियान फर्क कुर्बानी सबर और जुल्म के खिलाफ खड़े होना, ये हमें सिखाता है कि सच्चाई और इंसाफ के लिए किसी भी मुश्किल का सामना करना चाहिए चाहे उसके लिए कितनी ही बड़ी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। योर टॉपिक आंसर ओके वेरी नाइस। अच्छा ए मंसारी कहते हैं सिडो बेसिकली देखा जाए तो हम नाम के इसके ऊपर ना मेरी भी यही सोच है कि हम नाम के मुसलमान रह चुके हैं, हमारा वो जो यानी हमें जिस तरह अपना जिंदगी अपनानी चाहिए, जिस तरह हमें काम करनी चाहिए, जिस तरह से हमें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, वो चीजें तो हम करते हैं नहीं। बस मुझे यही लगता है वाकई कि हम नाम के मुसलमान रह चुके हैं, लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं ना, ये चीज भी हमारे सामने आ जाती है कि हमने कोशिश करनी है और हम जो है ना वो थोड़े थोड़े से यानी कि थोड़ा थोड़ा करके अपनी जिंदगी के अंदर वो तमाम चीजें ऐड करें जिन चीजों का हमें हुक्म दिया गया है। तो बस थोड़ा थोड़ा करके आप जरा अपनी जिंदगी को जो है ना वो आसान बनाने की कोशिश करें, अल्लाह पाक बाकी मदद करने वाले हैं। और चाचा खालिद कहते हैं कि और भी दुख हैं जमाने में मोहब्बत के सिवा, एग्जैक्टली बहुत कुछ है दुनिया में। और फहीम कहते हैं कि वो अपने बाप का दादा ओके ये जी थोड़ा सा हम जरा ऐसे स्किप करेंगे। और फहीम बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं। और चाचा खालिद कहते हैं वो उमर के बारे में जस्ट किडिंग, वो तो ईद शो में आप दोनों ने मजाक किया था, इट्स ओके मैं बड़े दिल वाला हूँ सो चलें कोई बात नहीं। वैसे वो मजाक जो है ना उसको मजाक के हद तक ही रखा करें, बाकी सब बहुत अच्छा है, अपना ख्याल रखिए, डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स लाजमी लगाइएगा। वैसे कल 5 तारीख होगी 5 मुहर्रम की, तो मैं कल आऊंगी और कल जो होगा मेरा मतलब ऐसा समझ लें कि लास्ट डे होगा, उसके बाद जो है ना वो हम 11 या 12 तारीख के ऊपर जो है ना दोबारा से आप लोगों को ज्वाइन करेंगे।

अच्छा गुल मोहम्मद भाईजान बहुत शुक्रिया, ये आपका प्रोग्राम है तो बस आपको अच्छा लगना चाहिए, आप लोगों को अच्छा लगना चाहिए। और साथ साथ वासु भाई भी हमारे प्रोग्राम में ज्वाइन हो चुके हैं, वासु भाई आपका बहुत शुक्रिया। कहते हैं अदि कसीदो, अच्छा अच्छा चलें बिस्मिल्लाह आप खाइए। और दर्दे दिल कहती है कि सच में सिदरा तुम बातें बस ठीक है, मेरी इतनी तारीफ मत किया करे। और ये किशोर भाई कहते हैं कि हम मुहर्रम में प्रोग्राम करती हैं, मैं इस पर भी हैरान हूँ, बिल्कुल आप कुछ भी कर सकते हैं। हाँ मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मुझे ना किसी भी टाइप का शो दे दे मैं करके दिखा दूँ।

अच्छा आज की मतलब प्रोग्राम में जिन लोगों ने हमारी पोस्ट को लाइक नहीं किया है ना, तो जल्दी से कर दें, क्योंकि मुझे जो है ना वो आज के प्रोग्राम में लाइक्स थोड़े कम नजर आ रहे हैं. तो मुझे जो है ना मतलब एक होता है ना कि ऑब्सेशन होती है कि भाई एक इंसान की, तो मुझे ये लगता है कि मेरे प्रोग्राम में लाइक्स जो है ना वो बहुत ज्यादा दिखने चाहिए. तो लाइक्स जो है ना वो कर दें जिन लोगों ने नहीं किया. और साथ साथ जो है मैं आज जिन लोगों की जरा फरमाइशें स्किप करूंगी तो उसके लिए माजरत कर देते हैं. बाकी इंशाल्लाह आप लोगों से मेरी जो है ना मुलाकात कल वाले प्रोग्राम में तो होगी, तो जिनकी फरमाइशें रह जा रही हैं तो वो कल आकर मैं लगा लूंगी. और साथ साथ आपको ये जरूर मैं कहती हूँ जनाब कि आप इस्तेमाल किया करें जो भी प्रोडक्ट आपको मैं बताती हूँ, और वो जो प्रोडक्ट मैं आपको बताती हूँ वो आपकी स्किन के मुताबिक होते हैं. उनके अंदर ऐसा कोई सीन नहीं होता कि भाई आप लगाएं तो आप लोगों को नुकसान पहुंचेगा. मैं ये हरगिज नहीं चाहूंगी, क्योंकि वो जो भी मैं आप लोगों के लिए प्रोडक्ट लेकर आती हूँ तो वो आप लोगों की स्किन के मुताबिक होते हैं, आप लोगों को जो है ना अच्छे वाले रिजल्ट देने के लिए होते हैं. तो जब भी आप इस्तेमाल करें व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, तो इनके जितने भी यानी कि ऐसी चीजें हैं जिनके जो इनके अंदर ऐड की गई है तो वो आपकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए है. और आप लोगों के लिए सबसे बड़ी बात, जैसे कि भाई मैं आप लोगों को बताती हूँ कि व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए हर तरह के प्रोडक्ट मौजूद है. यानी कि अगर आप नाइट क्रीम नहीं लगा पाते हैं तो आप फेयरनेस क्रीम लगाएंगे, एक्नी प्रॉब्लम आपको आ चुकी है तो आप डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके लिए सोप मौजूद है, आपके लिए फेस वॉश मौजूद है, हर तरह का प्रोडक्ट आपके लिए अवेलेबल है. तो आप जो भी अपने स्किन के ऊपर सूट करने वाला प्रोडक्ट यानी कि जो भी प्रोडक्ट आप लगाना चाहते हैं उसे आप लगाइए, और जो है ना फिर मुझे बताइए कि आपको रिजल्ट्स कैसे मिलते जा रहे हैं. और उसके अलावा ये जी हमारे प्रोग्राम का लास्ट कसीदा हमने लिस्ट में लगा लिया है, इसके साथ आप लोगों से हम इजाजत भी लेंगे. ज्यादा ज्यादा आपको कहकर जाऊंगी कि आप जरूर डायल कीजिएगा 03-15-799-0595, ये नंबर डायल कीजिए ताकि आपके लिए आसानी हो जाए, आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर ये तमाम प्रोडक्ट्स अवेलेबल करा सके, और उसके बाद आप जो है ना इजीली जाकर परचेज कर सके. तो आप नंबर जरूर डायल कीजिएगा. इसी के साथ इंशाल्लाह आप लोगों से जो है ना मुलाकात मेरी कल वाले प्रोग्राम में होने वाली है. सो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, कहीं पर कोई गलती हो गई तो मैं माजरत ख्वाह हूँ, जिनके फीडबैक रह चुके हैं, जिनकी फरमाइश रह चुकी है, सभी से माजरत करते हैं. ऐं किथे मु को एड़ो लफ्ज़ गाले जो जेको तवां के सुठो न लगे उन जे लाइ भी माजरत कयूं था. सो मुकलानी नाहे बाबू सिन सलामत सा सलामत अल्लाह हाफिज़ बाय बाय लव यू ऑल एंड टेक केयर.

होटली में पढ़ने औरत जो घर में फाव खाद लाश है तो सुमेरा जाल करीम बख्श बबर जो लाश घर में मिलो औरत के मुड़स करीम बख्श बबर चवण आए तो आऊँ बहर सामान वन वयस तो पया जाल पखे में फाव खाई आपघात कर पुलिस चवण आए तो मामले की जांच कर रहा है। पनवाकल में अगवा थियल सभा कलोड़ों की बाजियाबी लाए शहर की एहतजाजी रैली सियासी समाज दुरन बेनजीर पार्क का ईद चौक ने रैली कड़ी। पनवाकल में अगवा थियल सभा कलोड़ों और सालेपट में अगवा थियल नींगरी प्रिया कुमारी के बाजियाब करण जो मुतालबो। सिंध के मुख्तलिफ शहर में किथे मिट्टी जो तूफान तो किथे बरसात बिजली बंद शिकारपुर में बर्फाजी में मिट्टी के तूफान बरसात से बिजली बंद थी पई। मियां साहब ए मीरपुर बुरडो में भी तेज तूफान से वसकारो तेज तूफान ए बाद मुख्तलिफ इलाकों की बिजली बंद थी पई। बलोचिस्तान के ओस्ता मोहम्मद में भी ककर वसी पिया मौसम खुशगवार। गिथोरो में आबाद घर पारा पानीकोट खिलाफ एहतजाज पली माइनर सामने निकलंदड़ सईद की शाख के पुछने आबाद घर पानीकोट खिलाफ एहतजाज कयो पानी फराहम करण जो मुतालबो। मीरपुर पठोरो वेझो झोक शरीफ में आबाद करण जो पानी के कोट खिलाफ एहतजाज रही पानी की कोट गरम करण जो मुतालबो। हैदराबाद में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के स्क्रीन टेस्ट ईंदड़ उम्मीदवार जो एहतजाज उम्मीदवार जो एसपीएससी के मोबाइल नाइंसाफन की शफाफ जांच करण जो मुतालबो। गुजारिन जो एसपीएससी मनपसंद के नवाजे रो है इम्तिहान समेत नतीजन वाले अमल के शफाफ बनाए वे। सखर की अदालत पनवाकल में मुकाबलो जड़ाए मारियल जहांगीर जखरानी जो केस दाखिल करण जो हुक्म दई छो। सखर की अदालत एसएचओ अब्दुल शकूर लाखो समेत नवन एंकरन खिलाफ एफआईए के केस दाखिल करण जो हुक्म दिनों। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सखर अल्लाह बचाओ कबूल एफआईआर दाखिल करण वाले केस की बुधनी कई। दरख्वास्त गुजार सफदर जखरानी मकतूल की न्याणी मुकदस ए वकील मुर्तजा कोरे अदालत में पेश थे। अदालत चो तो एसएचओ अब्दुल शकूर लाखो एएसआई खालिक दिनों जतोई ए पुलिस अहलकारन खिलाफ केस दाखिल किया वे। पनवाकल पुलिस 16 अक्टूबर 2025 जहांगीर जखरानी के मुकाबले में मारण की दावा कई हुई। आयकनकोट वेझो बिन मोटरसाइकिल विच में टक्कर बजना फोत हेबत रोड के हादसे में गुलाम मुस्तफा पंगवाल राशिद चाचड़ हयाती विजाए वेठा। पनियाकल वेझो हादसे में दादो पोटी समेत फोत बजना जख्मी सांगी वेझो कौमी शाह मोटरसाइकिल में आमू सामू टक्कर थो शाहनवाज चाचड़ हस पोटी आयशा फोत।

0: के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अतकड़िया वालिया बावा ते मेरा मौला बैन कुचैया हुंदा, हथकड़िया वालिया बावा ते मेरा मौला बैन कुचैया।

दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: बहजो शहर बहजो घर सकरंड आई सकरंड जो आवाज
2: GFM 90.8

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
0: सिंध के दिल से निकली आवाज, आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: It's 5:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli glow har niya josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

0: अव्हां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान वाइट एज ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: जीए एफएम 90.8 सकरंट नवाबशाह तरफा एक अहम और शानदार करियर मौको पेश कयो वने थो जीए एफएम 90.8 सकरंट नवाबशाह ते स्टेशन मैनेजर जी मौजिस पोस्ट लाए काबिल तजुर्बेकार और जिम्मेवार उम्मीदवारन का दरख्वास्तों तलब कयो वने थियो जीए एफएम एक अहड़े प्रोफेशनल फर्द जी गोल्हा में आहे जेको मीडिया मैनेजमेंट टीम लीडरशिप और ब्रॉडकास्टिंग शोबे में मजबूत सलाहियतूं रखे और इदारे के बेहतर अंदाज में अगते वधाए सके ख्वाहिशमंद उम्मीदवार पेंजी सीवी व्हाट्सएप जरिए मोकलिन व्हाट्सएप नंबर 03111770451 ही एक बेहतरीन करियर मौको है देर न करियो अभी अप्लाई करियो जीए एफएम 90.8 सकरंट नवाबशाह जो आवाज
2: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान मेहरान की पहचान जीए एफएम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज

مجھے اکبر پہ سر عطا کر. میری بہن کی حسرت ہے

0: मुझे यकीन।
1: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: सिंध असेंबली में बजट ते बहस जारी, अपोजिशन मेंबर सूबाई बजट के रद्द करे छोड़ो, सालन का रयल तरक्याती मनसूबा सख्त तनकीद, हुकूमती मेंबर्स पारा बजट की वाखाण, तरक्याती मनसूबन की तारीफ कंदा रहा। एमक्यूएम जे एमपीए फहीम पटनी अरड़ी तरमीम ते सूबे में अमल न थियण सबब मसला पैदा थे हैं। सूबो वफाक का पैसा वठी विरासत न थो करे। पीपी एमपीए नूर मोहम्मद बुरगड़ी चोर दरवाजे का नाहू आया, बोर्ड सबब मुझे तक जा मुतासिर थियल स्कूल ठाए दिना वन, आबादगार भी पानी लाए परेशान हैं, पंजाब पारा रोकियल पानी वठी कोर्ट खत्म कई वन। राणा सनावला बजट पास, वज़ीर आज़म की तब्दीली वाली खबर के रद्द कर छोड़ो। पार्लियामेंट में मीडिया से गालाइंदे वज़ीर आज़म के सलाहकार राणा सनावला वज़ीर आज़म बेहतरीन कम कर रो है, कुछ मानू कूड़ियों खबरू पखेड़े मुल्क में अदम इस्तेकाम पखेड़ चाहन था, अड़ो को मामलो ना है। लाहौर की दहशतगर्दी टोड़ अदालत 9 मई ते पुलिस जो गाड़ियों सड़न वाले केस जो फैसलो बुधा छो। शाह महमूद कुरैशी बरी, यास्मीन राशिद, उमर सरफराज, सीमा एजाज चौधरी के 10-10 साल कैद की सजा। लाहौर की दहशतगर्दी टोड़ अदालत कोट लखपत जेल में केस जो फैसलो बुधा। पानी की बदतरीन खोट के मुंह डींदड़ सिंध मथा बलोचिस्तान जो पानी चोराण जो इल्जाम, मॉनिटरिंग लाए बलोचिस्तान जो फर्द सखर पिराज पहुंतो। आपपाशी खाते बलोचिस्तान के अमलदार मुदस्सिर जफर कोसो चाहता कीरतर केनाल की घुर्ज 2400 क्यूसिक है, असा के रुगो 1100 क्यूसिक पानी मिले तो बाकी पानी चोरी थी वे तो। सखर बैराज की इंतजामिया जवाब डींदे सिंध के पैं हिस्से जो पानी न तो मिले। पानी चोराण जो इल्जाम बेबुनियाद है, कुफर डैम के हटाण बाद सूरत में बेहतरी थी। सिंध के खुराक खाते में अरबे रुपये की करप्शन कदड़ 5 आफिसर मुलाजमन के नौकरियों मां निकाली, जिम्मेवार 2,65,62,00,000 उगड़ने जो भी हुक्म। केस एंटी करप्शन हवाले, फूड इंस्पेक्टर कंदकोट बलखशेर शेख, फूड सुपरवाइजर गुलारची हबीबुल्ला अबड़ो, फूड सुपरवाइजर जोही अली असगर पवर, फूड सुपरवाइजर मजीद कीरियो, दीदार हुसैन बख्शी, फूड इंस्पेक्टर हाली रोड हैदराबाद मोहम्मद अली बख्शी के नौकरी मां निकाली डिनी वही। खुराक खाते की सूबाई वजीर मखदूम महबूब जमान है बरतरफ आफिसर जा केस एंटी करप्शन के मोकलिया वह जिम्मेवार का पैसा उगड़ने लाए अदालत में सिविल सूट दाखिल किया वा। घोटकी वेझो जमीन की मालिकी ता बिन धुरियन में जेड़ो एक जड़ो कतल, घोट नूर मोहम्मद शहर में शहर बिरादरी की बिन धुरियन में जेड़ो थो, जेड़े दौरान गोलियों लगन सबब राशिद शहर मार एक जड़े के कतल बाद धुरियन में छिकताण बधी वही। सेवण में 4 ढी अग घर ठाण लाए बैंक में पैसा वठण बाद गुम थियल पीरसन जो लाश हथ, घोट नव वाहण के रवासी पीरसन मोहम्मद सिद्दीक आले पुट जो लाश जहाज चौक ता मिलो। पीरसन के वारिसन जो चवण है पीरसन के पैसन की लालच में अगवाबाद तशद्दुद बाद कतल कर वो है। पन्नू अकील की सभा कलोड़ो ए संग्रार मां 5 साल अग अगवा कयल प्रिया कुमारी की बाजियाबी लाए शहरियन के एहतजाजी रैली, सियासी समाजी धुरियन बेनजीर पार्क का ईद चौक ताई रैली कढ़ी। पन्नू अकील मां अगवा थियल सभा कलोड़ो ए साले पट मां अगवा थियल नींगरी प्रिया कुमारी के बाजियाब कराण जो मुतालबो।

0: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ बिंदीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डीह जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: जीए एफएम 90.8 सकरंट नवाबशाह तरफा एक अहम और शानदार करियर मौकियो पेश कर वने थो जीए एफएम 90.8 सकरंट नवाबशाह ते स्टेशन मैनेजर जी मौजिस पोस्ट लाए काबिल तजुर्बेकार और जिम्मेवार उम्मीदवार इनका दरख्वास्त तलब कई वने थियो जीए एफएम एक अहड़े प्रोफेशनल फर्द की गोल्हा में है जिको मीडिया मैनेजमेंट टीम लीडरशिप और ब्रॉडकास्टिंग शोबे में मजबूत सलाहियतों रखे इदारे के बेहतर अंदाज में अगते वधाए सके ख्वाहिशमंद उम्मीदवार पेंजी सीवी फॉरन व्हाट्सएप जरिए मोकलिन व्हाट्सएप नंबर 03111770451 ही एक बेहतरीन करियर मौको है देर न करो अभी अप्लाई करो जीए एफएम 90.8 सकरंट नवाबशाह जो आवाज
2: अजरक के रंगों से रंगी
3: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
3: GFM 88 Network, सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN News।
2: मुलाकात दौरान ईरान और अमेरिका विच में तय थे मफामत ते गालियन जे बे दौर बाबत मुशावरत थे।

0: मां कपीर दादो आयो मुझे बकरी खणी ऐं उते मूंखे वथे ॿ किसो ॿधे मूंखे ऐं ॾिनो अञा वॾे साईं खे गुलाम ॾे साईं गुलाम ॾे साईं उते मूंखे कुटियो उते ॿधी मूंखे पोयों टंगल पोयों बाह ॿधे मूंखे उते मारियऊं कुटियऊं दां कयूं रड़ियूं कयूं कंहिं कोन तरियो
1: मटियारी में पोरियत ते वेछाणो तशद्दुद कंदड़ वडेरो वीडियो वायरल थियण बाद गिरफ़्तार केस दाखिल एसएसपी मटियारी जी नोटिस वठण बाद पुलिस वडेरे गुलाम अली शाह खे गिरफ़्तार कयो बासर वडेरे पोरियत सलीम उर्फ इज़त शहर ते तशद्दुद करे बकरी ऐं गॾु गाॾो पुर कयो हो पोरियत इज़त शहर चयो त बकरी छॾाइण वियसि त मूंखे बकरीअ सां बधी गुलाम शाह तशद्दुद जो निशानो बणायो तशद्दुद में कांग चांग बि मौजूद हो इंसाफ़ कयो वञे हैदराबाद में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की स्क्रीनिंग टेस्ट ईंदड़ उम्मीदवारन जो एहतजाज उम्मीदवारन जो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की मुबैना नाइंसाफियन की शफाफ जांच कराने जो मुतालबो मुजाहिन चयो त सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन मनपसंदन के नवाजे रही है इम्तहानन समेत नतीजन वारे अमल के शफाफ बणायो वञे

अन्य अकेल जे नौजवान जहांगीर चकरानी के जुड़तू मुकाबले में मारे हुए। सक्कर जी अदालत महफूज कल फैसलो बुधाईंदे SHO अब्दुल शकूर लाखों समेत नव अहलकार खिलाफ केस दाखिल करने को हुक्म दई छो। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सक्कर अला बचाओ गबोल गुजरियल डी महफूज कल फैसलो बुधायो। दरख्वास्त गुजार सफ्तर जकरानी मकतूल की न्याणी मुकदस ए वकील मुर्तजा कोराई अदालत में पेश थे। अदालत SHO अब्दुल शकूर लाखों SI खालिक डो जतोई ए पुलिस अहलकार खिलाफ केस दाखिल वे। पन्नू अकिल पुलिस 16 अक्टूबर 2025 नौजवान जहांगीर जकरानी के मुकाबले में मरण की दावा कई हुई।

खैरपुर भरसां टीह थंभनि तां बिजली जूं 11,000 वोल्टेज जूं तारूं चोरी। 100 ॻोठनि जी बिजली बंदि, हिकु जवाबदार सोगोयो। ॻोठ कासिमपुर कोटो भरसां टीह थंभनि तां तारूं चोरी कयूं वयूं। ॻोठाणनि हिकु जवाबदार खे सोगो करे पुलिस हवाले कयो। ॻोठाणनि मुजिबि तारूं चोरी थियण करे 100 खां वधीक ॻोठनि जी बिजली बंदि आहे।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: जीए एफएम 90.8 सकरंट नवाबशाह तरफा एक अहम और शानदार करियर मौके पेश कर वने थो। जीए एफएम 90.8 सकरंट नवाबशाह ते स्टेशन मैनेजर जी मौजिस पोस्ट लाए काबिल तजुर्बेकार और जिम्मेवार उम्मीदवार का दरख्वास्त तलब कई वन थी। जीए एफएम एक अड़े प्रोफेशनल फर्द की गोल्हा में है जो मीडिया मैनेजमेंट टीम लीडरशिप और ब्रॉडकास्टिंग शोबे में मजबूत सलाहियतों रखे इदारे के बेहतर अंदाज में अगते वधाए सके। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार सीवी फॉरन व्हाट्सएप जरिए मोकलिन। व्हाट्सएप नंबर 03111770451। ही एक बेहतरीन करियर मौके है, देर न करियो, अभी अप्लाई करियो। जीए एफएम 90.8 सकरंट नवाबशाह जो आवाज।
2: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान जीए एफएम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

वगुनी गरजो कोठी तरस सदाई वगुनी गरजो पांजे नढड़े अदे अली असगर जो कोठी तरस सदाई कोठी तरस सदाई वगुनी गरजो पांजे नढड़े अदे अली असगर जो कोठी तरस सदाई तुझे उठड़े अदा कर खैर धनी ये दुआ थी घुरां पांजा हड़ा धनी तुझे उठड़े अदा कर खैर धनी ये दुआ थी घुरां पांजा हड़ा धनी शल तो के बिडे रब उम्र घनी जोरो जल्द पहुंचाए जाए दिल पर जो ओठी तरस सजाए वगोनी गर जो ओठी तरस सजाए वगोनी गर जो पांजे नंढड़े अदे अली असगर जो ओठी तरस सजाए वन्यन पहुंचंदे जाते वन्यनो थई मुझी कैल सदा के मन्यनो थई वन्यन पहुंचंदे जाते।

दग जो ओठी तरस सजाय भगोनी गरजो ओठी तरस सजाय भगोनी गरजो पांज नढड़े अदे अली असगर जो ओठी तरस सजाय चयो ओठी अप्र अहवाल तडस बाबा बाबा करे करी कान थी बस चयो ओठी अप्र

हर हर जो ओठी तरस सजाए भगोनी गर जो पांज नंढड़े अदे अली असगर जो ओठी तरस सजाए चयो साईं सुगरा नाम अथम अबो बाबा हुसैन इमाम अथम चयो साईं सुगरा।

वर जो ओठी तरस सजाए भगोनी गर जो ओठी तरस सजाए भगोनी गर जो पांजे नढड़े अते अली असगर जो ओठी तरस सजाए लफ्ज़ बचड़िया जान जब बुधन लगो ओठी बे अख्तियार की रोन लगो लफ्ज़ बचड़िया जान जब बुधन लगो ओठी पे अख प्यार री रोन लगो खतनी दुस न्याणी आ चवण लगो खतनी दुस न्याणी आ चवण लगो मां गुलाम हुसैन जे दर जो ओठी तरस सजाए वगुनी घर जो पांजे नढड़े अते अली असगर जो ओठी तरस सजाए कयों हे डाटा शाला कन जे करे जग खलको खुदा वंद जन जे करे कयों हे डाटा

0: GAFM 90.8 सकरंट नवाबशाह तरफा एक अहम आई शानदार करियर मौकियो पेश कयो वने थो GAFM 90.8 सकरंट नवाबशाह ते स्टेशन मैनेजर जी मौजिस पोस्ट लाए काबिल तजुर्बेकार आई जिम्मेवार उम्मीदवारन का दरख्वास्तो तलब कयो वने थियो GAFM एक अहड़े प्रोफेशनल फर्द जी गोल्हा में आहे जेको मीडिया मैनेजमेंट टीम लीडरशिप आई ब्रॉडकास्टिंग शोबे में मजबूत सलाहियतूं रखे आई इदारे के बेहतर अंदाज में अगते वधाए सके ख्वाहिशमंद उम्मीदवार पेंजी सीवी फॉरन व्हाट्सएप जरिए मोकलिन व्हाट्सएप नंबर 03111770451 ही एक बेहतरीन करियर मौको आहे देर न करियो अभी अप्लाई करियो GAFM 90.8 सकरंट नवाबशाह जो आवाज सकरंट की हो तो आवाज भी सकरंट की है
1: सुनते रहो GAFM 90.8

नंगे सरे पुपी उरलू बाजार में, नंगे सरे पुपी उरलू बाजार में, नंगे सरे पुपी।

नुमाइंदा बि टियाकड़ी तौर ॻाल्हियुनि में शरीक थींदा। परॾेही तर्जुमान ताहिर हुसैन अंदराबी चयो आहे त पाकिस्तान टियाकड़ी तौर इस्लामाबाद मफ़ामती यादाश्त नामे खे अॻिते वधाइण में सहूलतकारी जारी रखंदो। ईरानी फ़ौज लबनान ते इसराइली हमलनि बाद आबनाए हुर्मस खे ॿीहर बंदि करे छॾियो। ईरान जी बंदि रहंदो। हुर्मस खे मफ़ामती यादाश्त नामे जी भञकड़ीअ ते बंदि कयो वियो। लबनान ते इसराइली हमला अञा बि जारी आहिनि। हमला जारी रहिया त वधीक सख़्त क़दम खया वेंदा। जंगबंदी जे ऐलान बावजूद इसराइल जा लबनान ते फिज़ाई हमला जारी। 7 शहरी शहीद, केतिरा ई ज़ख़्मी। लबनानी अख़्तियारनि मूजिबि इसराइली जंगी जहाज़नि ऐं ड्रोन्स नबतिया जे इलाइक़नि में आबादियुनि खे निशानो बणायो। इसराइली फ़ौज पारां इमारतुनि ते बमबारीअ जो सिलसिलो वक़फ़े वक़फ़े सां जारी आहे।

बजेट में पगारदार तबके ते बार विझण बदिरां टैक्स उगाड़ीअ खे बहितर करे रहिया आहियूं। टैक्स ॾींदड़ ऐं उगाड़ी कंदड़ ऑफिसर विच में तालुक जे ख़ात्मे लाइ फीस लेस सिस्टम आणे रहिया आहियूं। क़ौमी असेंबली में बजेट ते बहस खे सेड़ींदे नाणे वारे वफ़ाक़ी वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब चयो आहे त असांजी कोशिशुनि रंग लाथो आहे। खिते मां जंग ख़तम थी आहे। पाकिस्तान अमरीका ऐं ईरान खे ॻाल्हियुनि जे मेज़ ते विहारियो। पाकिस्तान जंग रोकण में अहम किरदार अदा कयो। वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल ऐं अवाम खे वाधायूं पेश कयां थो।

सिंध असेंबलीअ में बजट ते बहस जारी। अपोजिशन मेंबर्स सूबाई बजट खे रद्द करे छॾियो। सालनि खां रहियल तरक़ियाती मनसूबा मुकमल न थियण ते सख़्त तनक़ीद। हुकूमती मेंबर्स पारां बजट जी वाखाण, तरक़ियाती मनसूबनि जी तारीफ़ कंदा रहिया। एम क्यूम जे एम पी ए फ़हीम पटनी चयो त अरिड़हीं तरमीम ते सूबे में अमल न थियण सबबि मसला आहिनि। सूबो वफ़ाक खां पैसा वठी विरासत नथो करे। पीपल्स पार्टी एम पी ए नूर मोहम्मद दरवाज़े खां नायूं आया। बोर्ड सबबि मुंहिंजे तक जा मुतासिर थियल स्कूल ठाहे ॾिना वञनि। आबादगार बि पाणीअ लाइ परेशान आहिनि। पंजाब पारां रोकियल पाणी वठी खोट ख़तम कई वञे। राणा सनावला बजट बाद वज़ीर आज़म जी तब्दीली वारनि ख़बरुनि खे रद्द करे छॾियो। पार्लियामेंट में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे वज़ीर आज़म जे सलाहकार राणा सनावला चयो आहे त वज़ीर आज़म बहितरीन कमु करे रहियो आहे। कुझु माण्हू कूड़ियूं ख़बरूं पखेड़े मुल्क में अदम इस्तेहकाम पखेड़णु चाहिनि था। अहिड़ो को बि मामिलो नाहे।

लाहौर जी दहशतगर्दी टोल अदालत 9 मई ते पुलिस जो गाड़ियों साड़न वाले केस जो फैसलो बुधाए छो। शाह महमूद कुरैशी बरी यासमीन राशिद उमर सरफराज चीमा एजाज चौधरी के 10-10 साल कैद की सजा। लाहौर की दहशतगर्दी टोल अदालत कोट लखपत जेल में केस जो फैसलो बुधाया।

बदतरीन खोट के मुंह डींदड़ सिंध मथा बलोचिस्तान जो पानी चोराइण जो इल्ज़ाम मॉनिटरिंग लाइ बलोचिस्तान जो वफद सखर बिराज पहुतो अपाशी खाते बलोचिस्तान के अमलदार मुदसर जफर खोसो चयो त खीरथर कैनाल की घुर्ज 2400 क्यूसिक है असां खे रुगो 1100 क्यूसिक पानी मिले तो बाकी पानी चोरी थी वञे तो सखर बिराज की इंतजामिया जवाब डींदे चयो त सिंध के पंहिंजे हिस्से जो पानी ही नथो मिले पानी चोराइण जो इल्ज़ाम बेबुनियाद है कूफर डैम के हटाइण बाद सूरत हाल में बेहतरी थींदी बजो कराची में 800 एकड़ जमीन की अलाटमेंट रद्द करने वो फैसलो बरकरार सिंध हाई कोर्ट गैर कानूनी जमीन में फायदो वो दरख्वास्त रद्द कर छो कराची की जानल जमीन खामोशी से खानगी मानून के गरी रकम में विक्रो कई वही हुई सिंध हाई कोर्ट जमीन की अलाटमेंट रद्द करने वो नेब जो फैसलो बरकरार रखी छोड़

असां फ़क़ीर दादो आहे, मुंहिंजी ॿकरी खणी ऐं उते मूंखे वधी ॿकरी सॼो ॿधी मूंखे ऐं ॾिनो अञा वॾे साईं खे गोदाम ॾे साईं, गोदाम ॾे साईं उते मूंखे कुटियो, उते ॿधी मूंखे पोयों टंगर पोयों बाह ॿधी मूंखे उते मारियऊं कुटियऊं।

मटियारी में पूरे ते वेश्यानो तशद्दुद कंदड़ वडेरो वीडियो वायरल थियण बाद गिरफ्तार केस दाखिल। एसएसपी मटियारी जी नोटिस वठण बाद पुलिस वडेरे गुलाम अली शाह के गिरफ्तार करे वरतो। बासर वडेरे पूरे ते सलीम उर्फ इज्जत शरत ते तशद्दुद करे बकरी ए गडह गाडो फुरकयो हो। पोरत इज़त शर चयो तो बकरी छड़ाण वेस तो मुख्य बकरी से बधी गुलाम शाह तशद्दुद जो निशानो बनायो। तशद्दुद में बाली मोजन साई ए कांग चांग बे मौजूद हो। इंसाफ के वजे

हैदराबाद में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की स्क्रीनिंग टेस्ट ॾींदड़ उमेदवारनि जो एहतजाज, उमेदवारनि जो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की मुबैना ना इंसाफ़ियुनि की शफ़ाफ़ जांच कराइण जो मुतालबो। मुज़ाहिरु चयो त सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन मनपसंदनि खे नवाज़े रहियो आहे, इम्तिहाननि समेत नतीजनि वारे अमल खे शफ़ाफ़ बणायो वञे।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: जीए एफएम 90.8 सकरण नवाबशाह तरफा एक अहम आई शानदार करियर मौके पेश कर वने थो। जीए एफएम 90.8 सकरण नवाबशाह थे स्टेशन मैनेजर जी मौजिस पोस्ट लाए काबिल तजुर्बेकार आई जिम्मेवार उम्मीदवार इनका दरख्वास्तों तलब कई वने थियो। जीए एफएम एक अहड़े प्रोफेशनल फर्द की गोल्हा में है जिको मीडिया मैनेजमेंट टीम लीडरशिप आई ब्रॉडकास्टिंग शोबे में मजबूत सलाहियतों रखे आई इदारे के बेहतर अंदाज में अगते वधाए सके। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार पेंजी सीवी फॉरन व्हाट्सएप जरिए मोकलिन। व्हाट्सएप नंबर 03111770451। ही एक बेहतरीन करियर मौके है देर न करियो अभी अप्लाई करियो। जीए एफएम 90.8 सकरंट नवाबशाह जो आवाज।
2: अजरक के रंगों से रंगी,
3: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज।
3: GFM 88 Network, सिंध की आवाज़।

0: It's 8:15 PM.
1: This time check is brought to you by D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan. हर चप्पा हर गोशा
2: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
1: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: GAFM 90.8 सकरंट नवाबशाह तरफा एक अहम और शानदार करियर मौकियों पेश कर वने थो। GAFM 90.8 सकरंट नवाबशाह ते स्टेशन मैनेजर जी मौजिस पोस्ट लाए काबिल तजुर्बेकार और जिम्मेवार उम्मीदवार का दरख्वास्तों तलब कई वन थियो। GAFM एक अहड़े प्रोफेशनल फर्द की गोल्हा में आए जो मीडिया मैनेजमेंट, टीम लीडरशिप और ब्रॉडकास्टिंग शोबे में मजबूत सलाहियतों रखे और इदारे के बेहतर अंदाज में अगते वधाए सके। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार पैंजी सीवी फॉरन व्हाट्सएप जरिए मोकलिन। व्हाट्सएप नंबर 03111770451। ही एक बेहतरीन करियर मौके आए, देर न करियो, अभी अप्लाई करियो। GAFM 90.8 सकरंट नवाबशाह जो आवाज।
3: आप सुन रहे हैं
4: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

की हो तो आवाज भी सिंह की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंह की आवाज।

0: असा छड़ी यो वन्यू था वतन
1: सादात मदीने जा ते जो देश छड़ियो प्या वन्यू।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: ये सोचता हूँ के

0: हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क सिंक की आवाज।
1: हिसार नूर मेरी
2: याद है यहाँ बैठे थे और सच्चे भाई ने पढ़ा था।

0: उस अते जबां में नहीं के सनाली
1: लफ्ज की दादों पढ़ने की नहीं
0: सनाली

0: यकीन आए हाय हाय जियो सचे भाई मेरे यकीन की मन जिल तेरे
1: सना

0: आयो पंजाब जो घोड़ा घोड़ा कई तो सिंध पां शहर जो पानी पी वो है कब नदी जो पानी हो अस घुरो तो को अस इंडेंट तो को दिना हा तो अस एतो पानी पानी असो काउंट वो थो जो इंडेंट के जरिए अज भी तुम दिसो नील है डाउन स्ट्रीम कोटड़ी नील आसो न ये जून पो पूरो थे जुलाई पो शुरू थे पंद्रह मे का सारे जहाँ बेचारा पोखंदा सारियों ये काफ़ी हद तीन वड्यू थी चुक हुजन सारियों न पोखे सकन हाँ जो सारियों हिंसर पोखंदा या जाती है वो जुलम ही क्राप तो थे सजो साल वो इन्हीं डिपेंड था कन इर्साद से बाकायदे केस कर वे सिंध गवर्नमेंट खपे तो सीसीआई में यो केस खड़ी वे
1: पानी की खोट कोटड़ी बैराज डाउन स्ट्रीम में घुसल डेढ़ महीने का पानी छोड़ मुकम्मल तौर बंद दरिया के पेट में वारी उडाण लगी कोटड़ी बैराज जो मथाओ वेकरो 18,195 क्यूसिक हेठाओ वेकरो जीरो रिकॉर्ड कराची बाह फुलेली पिनारी ए फुलेली बाहन में पानी की शदीद खोट हैदराबाद बदीन सजावल टंडो मोहम्मद खान में कमद ए पुटियन जहा फसल सुखी वह पानी न अचण की सूरत में इलाके में सूरत हाल खराब थे खदशो

ईरान ऐं अमरीका विच में इस्लामाबाद मफ़ामती याददाश्त नामे तहत ॻाल्हियुनि जो ॿियो मरहलो सुभाणे स्विट्ज़रलैंड में थींदो। स्टे विटकोफ ऐं जेड कुशनर ते ॿधल अमरीकी वफ़द अॻुवाटी स्विट्ज़रलैंड में मौजूद। ईरानी वफ़द बि स्पीकर बाकिर कालिबाफ़ जी अॻुवाणी में तहरान खां स्विट्ज़रलैंड रवानो थी वियो। परॾेही वज़ीर अब्बास राक्षी बि वफ़द जो हिसो आहे। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ पारां ॻाल्हियुनि जो हिसो थियण जो इम्कान। अमरीकी नायब सदर बि स्विट्ज़रलैंड ॾेई छॾियो। जे डी वेंस चयो आहे त ईरान सां ॻाल्हियुनि बाबति मामला सुठे तरीक़े सां हली रहिया आहिनि। ॻाल्हियूं सुभाणे शुरू थींदियूं। थी सघे थो त ॻाल्हियुनि में शिरकत लाइ मां बि कुझु ॾींहनि में स्विट्ज़रलैंड वञा।

0: विच में टेक्निकल सतह से गालू सुभाने स्विट्जरलैंड के शहर बर्गनस्टॉक में थी रही हैं। पाकिस्तान ए कतर जा नुमाइंदा भी सालिस तौर गालियन में शरीक थींदा। परडे तर्जमान ताहिर हुसैन इंदिरा भी चाहे तो पाकिस्तान सालिस तौर इस्लामाबाद मफामती यादाश्त के अगते बढ़ाने में सहूलतकारी जारी रख।
1: ईरान अमेरिका अमन माहिदो इसराइल का हजम न थो जंगबंदी के ऐलान बावजूद लबनान ते फिजाई हमला जारी सत शहरी शहीद केतरा ही जख्मी। लबनानी अख्तियार मूजिब इसराइली जंगी जहाजन ए ड्रोन्स नबतिया के इलाकन में आबादी के निशानो बनाया। इसराइली मीडिया मूजिब नेतन याहू लबनान ते हमला रोकने जो हुक्म दे छो है।
0: फौज लबनान के इसराइली हमलन बाद अपना हरमुस के बीहर बंद कर छो। ईरान की गडियल मिलिट्री कमांड है अपना हरमुस बहरी जहाजन लाए बंद रहो। हरमुस के मुफामती आदाशी बचकड़ी ते बंद कर लबनान के इसराइली हमला अया भी जारी है। हमला जारी रहा तो सख्त कदम खया वा।
1: कौमी असेंबली 407 अरब 51 करोड़ का वधिक जी लाजमी खर्चन जी मंजूरी दे छी। मुल्की कर्जन ते व्याज दियण लाए 69 अरब 82 अरब का वधिक रकम रखी वई। मुल्की कर्ज दियण लाए 269 अरब 92 अरब 20 करोड़ रुपया रख्या वया। मुल्की कर्जन ते व्याज दियण लाए 69 अरब 82 अरब का वधिक रकम मुख्तस। परदेही कर्जन जी वापसी लाए 58 अरब 36 अरब का वधिक रकम रखी वई। परदेही कर्जन ते व्याज दियण लाए 10 अरब 41 अरब 39 करोड़ रुपया रख्या वया। सुप्रीम कोर्ट लाए 7 अरब 44 करोड़ रुपया मुख्तस। वफाकी आइनी अदालत लाए 6 अरब 4 करोड़ का वधिक जी रकम रखी वई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाए 2 अरब 36 करोड़ मुख्तस। कौमी असेंबली लाए 7 अरब 96 करोड़ सेनेट लाए 6 अरब 42 करोड़ रुपया रख्या वया। सदर जी प्रिंसिपल ऑफिस के मुलाजमन के अलाउंसिस लाए 1 अरब 83 करोड़ रुपया मुख्तस।
0: बजट में पगारदार तबके ते बार विचण बदरा टैक्स उगाड़ी के बेहतर कर रहा हूं। टैक्स डीदड़ ए उगाड़ी कदर ऑफिसर विच में ताल्लुक के खात्मे लाए फीस लेस सिस्टम आने रहा हूं। कौमी असेंबली में बजट ते बहस के सेड़ी दे नाड़े वाले वफाकी वजीर मोहम्मद औरंगजेब है तो असाजी कोशिश रंग लातो है खिते में जंग थी है। पाकिस्तान अमरीका ए ईरान के गालियन की मेज ते विहारो। पाकिस्तान जंग रोकण में अहम किरदार अदा कियो। वजीर आजम फील्ड मार्शल अवाम के वादायूं पेश कया तो।
1: सिंध असेंबली में बजट ते बहस जारी।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: GAFM 90.8 सकरंट नवाबशाह तरफा एक अहम और शानदार करियर मौको पेश कर वने थो। GAFM 90.8 सकरंट नवाबशाह ते स्टेशन मैनेजर जी मौजिस पोस्ट लाए काबिल तजुर्बेकार और जिम्मेवार उम्मीदवारन का दरख्वास्तों तलब कई वनन थियो। GAFM एक अहड़े प्रोफेशनल फर्द की गोल्हा में आए जो मीडिया मैनेजमेंट टीम लीडरशिप और ब्रॉडकास्टिंग शोबे में मजबूत सलाहियतू रखे और इदारे के बेहतर अंदाज में अगते वधाए सके। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार पैंजी सीवी फॉरन व्हाट्सएप जरिए मोकलिन। व्हाट्सएप नंबर 03111770451। ही एक बेहतरीन करियर मौको आए। देर न करो अभी अप्लाई करो। GAFM 90.8 सकरंट नवाबशाह जो आवाज। सकरंट के हो तो आवाज भी सकरंट की है।
4: सुनते रहो GAFM 90.8।